0: उजा रेडियो
1: देश भर में सुनाई देता है फीएनडीएबी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं निशा बोल रही हूँ और हाँ, सुरीनाम के सुनने वालों को या जहाँ से भी आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इस्तकबाल करती हूँ। गीतों का नशा आज सर चढ़ कर बोलेगा। अपने संगीत की खजानों से एक के बाद एक सदाबहार नगमे हमने चुने हैं, इसमें ज़रूर आपकी पसंद भी होगी। शुरू करती हूँ ये दुआ से। खूबसूरत है वो दिल, खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे, वो हाथ जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम ले। ऐ मालिक कायनात, सुबह होते ही मेरे प्यारों के दिली मुरादे, तमन्नाएं, ख्वाहिशें, उम्मीदें पूरी फरमा। उनको इज्जत, सेहत, मोहब्बत, रहमत अता फरमा। उनको हर दुख दर्द तकलीफ परेशानी से महफूज फरमा।

इलाही आंसू भरी जिंदगी किसी को ना दे। उस्ताद मेहदी हसन से पेश थी ये दुआ। अब हम ऐसे ही रूहानियत अंदाज में महान शास्त्रीय संगीत का गायक पंडित अजॉय चक्रवर्ती की सुर में मेरा भजन सुनवाते हैं। बोल है, मत जा जोगी, पाऊं परू मैं तेरी।

रोंगटे खड़े हो जाती है ऐसी आवाज से। महान शास्त्रीय संगीत का गायक पंडित अजॉय चक्रवर्ती के सुर में पेश था ये भजन। इसी तरह हमने मजहबी और भक्ति संगीत आपको सुनवाए। नजर अंदाज करने वाले तेरी कोई खता नहीं। मोहब्बत क्या होती है शायद उसे पता नहीं। इसलिए तन्हा हो जाना नजर अंदाज होने से बेहतर है। किसी ने भी तो ना देखा निगाह भर के मुझे।

शायराना अंदाज में पेश थी ये गज़ल श्री पंकज उधास की आवाज़ में। कलाम था शायर मजरू सुल्तानपुरी का, मौसिकी थी आनंद मिलेन की। तकदीर ने जैसे चाहा वैसे ढल गए हम। बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम। किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल और लोगों को लगता है कि बहुत बदल गए हम।

दिल छू लेने वाले गजल पेश थी उस्ताद गुलाम अली की आवाज में, कलाम था शायर अनवर मसरूर का। ये जो हालात है मेरे एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन काफी लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा।

स्वर की मालिका लता मंगेशकर से पेश थी ये गज़ल, श्री जगजीत सिंह की मौसिकी थी, कलाम था शायर अहमद फराज का। उजाला रेडियो का पसंदीदा प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जिसमें आपको कई शैलियों में गीत संगीत सुनने को मिलते हैं। वैसे तो आपको एक के बाद एक खूबसूरत सदाबहार नगमे सुनवाती हूँ, पर कभी कभी बीच बीच में अनसुनी गाने भी सुनवाती हूँ, जैसे कि ये गीत बोल है, भरी भूल हुई तुझे प्यार किया।

सुनहरे दौर का गीत पेश था। संगीत से सवारे थे बुल्लू सी रानी और जिया सिंधी का बोल था। अब क्या मैं आपको सुनाऊं? हाँ, लीजिए मोहम्मद रफी साहब से ये नगमा।

सदाबहार दो गाना पेश था, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की। चलो चलो इश्क में नहीं, चाहने की आदत नहीं, पर क्या करे हमें बस तेरी आदत है, और साथ में ये मौसम रंगीन।

एवरग्रीन सॉन्ग पेश था मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, और ये दो गाना प्रदीप कुमार और साइदा खान पर फिल्माया गया था। अब आप दिल थाम कर बैठिए, आ रही है शोला भरकाने और दिल धड़काने, जी हाँ, लता मंगेशकर।

जी हाँ, हो गई ना दिल खुश आज भी। इन गीतों में वही ताजगी है, वही हरियाली है। इसी अंदाज में ये गीत पेश है। आशा भोसले क्या सुनाएंगी अपनी शोखी आवाज में, आइए सुने। और हाँ, साथ में सुर से सुर मिला रहा है किशोर कुमार।

फिल्म बाप रे बाप में से ये गीत लिया है और संगीत से सवारे थे संगीतकार ओपी नैयर। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन के जुबां, आवाज़ है हेमंत कुमार की।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कई प्रोग्रामों में हमने महान मारू शख्स धर्मेंद्र के बारे में बयान किया है। हमने कोशिश किया है छोटी रूप में धर्म जी की फिल्मी सफर के बारे में बयान करने को, कैसे थी उनके पर्दे के पीछे की जिंदगी, उस पे हमने जरा सा रोशनी डाला है तो एहसास हुआ कि धर्म जी की निजी जिंदगी हम सब से अलग नहीं था। पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी कि धर्मेंद्र शोहरत की बुलंदियों पर था, लेकिन साथ ही साथ अपने बीवी प्रकाश के साथ बच्चों को जो सभ्यता, संस्कार, तालीम व तरबियत दिए है, पले बड़े है, आज भी बरकरार है। धर्म जी की पहली बीवी बच्चों के बारे में इतला तो किया, पर धर्मेंद्र का दूसरा दयाल खानदान भी है और धर्म ने ये फखर से कहा था। पर कब और कैसे धर्म जी की पहली मुलाकात हुई थी अपनी दूसरी बीवी से, पहले एक गीत सुनवाते हैं, फिर बातें आगे बढ़ाएंगे।

पहली नजर में हमने अपना दिल दिया था तुमको। फिल्म द बर्निंग ट्रेन का गीत पेश था और ये जुगल गीत धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना और प्रवीण बाबी पर फिल्माया गया था। धर्मेंद्र जी को अपना खानदान, मतलब बीवी बच्चे होने के बावजूद उसने दोबारा शादी किया था अदाकारा हेमा मालिनी के साथ नेहतीन तख्तक में, और इन दोनों को दो बेटियां हुई, ऐशा और अहाना दियो। धर्मेंद्र कहा कि इस हकीकत पर खुद को खुशकिस्मत महसूस करते हैं क्योंकि वो अपने दोनों घरों को संभाल सकता था, दोनों खानदान को खुश रख सकता था। पर ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली फिल्म थी फिल्म शराफत, फिर तुम हसी मैं जवान और नया जमाना। इन तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्म थे। आवाम इन फिल्मों को पसंद किया और ख़ास करके इन फिल्मों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी। हेमा मालिनी ने कहा कि आवाम हम दोनों की जोड़ी फिल्मों में पसंद किया था। तीनों फिल्में सुपर हिट फिल्में थी, पर वो महसूस किया था कि ये ना सिर्फ फिल्मी की मोहब्बत थी बल्कि मोहब्बत की शुरुआत का एक हकीकत जोड़ा था। शुरू में मैं उसे सिर्फ पसंद करती थी और उससे मोहब्बत नहीं करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है। हाँ, धर्मेंद्र को बे इंतहा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उनकी पहली मुलाकात इससे कितने साल पहले हो चुकी थी। कब और कहाँ पहली बार मिले थे, एक गीत सुनवाती हूँ, फिर कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म शराफत में से ये गीत पेश था। ये धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एक साथ पहली फिल्म थी, पर इन दोनों पहली बार कब और कहाँ मिले थे? मुझे अब्बास की फिल्म आसमान महल की प्रीमियर में शामिल होने की दावत मिला था। मैंने अपनी पहली फिल्म सपनों का सौदागर के लिए दस्तखत की थी। मेरे साथ थी मेरी मम्मी। सब मेहमानों के बीच खड़े थे शशि कपूर और धर्मेंद्र, और जब उन्होंने मुझे देखा तो पंजाबी में मुस्कुराते कहा, कुड़ी बड़ी चंगी है, ये हेमा मालिनी ने कहा था। फिर उन्हें उनके सामने राज कपूर की ड्रीम गर्ल के तौर पर तारीफ कराया गया। फिल्म सपनों का सौदागर, जिसमें राज कपूर के साथ काम किया था और अवाम उस फिल्म को पसंद किया, उसके बाद हमने कई और अदाकारों के साथ काम किया। हेमा जी ने कहा, मुझे धर्म जी के साथ काम करने की इंतज़ार रहता था, पर आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गया, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं किया। हेमा जी ने कहा कि नेखती फैफ सिर्फ तक हम दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम किया। एक सैनिक के लिए धर्म जी कई बार रिटेक कराते थे, खास करके जब प्यार भरे सैनिक होते थे। धर्म जी हेमा के साथ शूटिंग पर आने के बहाने ढूंढते थे, तब भी जब उनकी ज़रूरत नहीं होती थी। अब हम आपको फिल्म नया ज़माना में से एक गीत सुनवाते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में, जो हेमा जी पर फिल्माया गया था। इसी फिल्म में थे हेमा के साथ धर्मेंद्र।

हेमा ने कहा कि इतनी सालों बाद वक्त के साथ साथ वो खुद धर्म जी की तरफ खींचती गई। वो जज्बा एहसास अंदर से महसूस कर रही थी और कहा हेमा ने, आखिरकार अपने मुस्तकबिल के शौहर का तसव्वुर बिल्कुल धर्मेंद्र जैसे ही किया था, बस फर्क ये था कि वो गैर शादीशुदा हो। लोग अब हेमा की और धर्मेंद्र के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, अफवाहें थे। इसके वजह से घर में तनाव था, वो उलझन में थी और कहा हेमा ने, ये तो तकदीर और मेरा नसीब था। वो अपने वालदैन पर नाराज थी इसलिए क्योंकि माँ बाप एक मुनासिब खुशखिक्त लड़का तलाश करने की जुनून जो था। लड़का चाहे डॉक्टर हो, बिजनेसमैन या अदाकार, धर्मेंद्र ने अपने जिद पर कायम था। वो हेमा जी से शादी करना चाहा। हेमा ने कहा कि हम दोनों एक साथ कई फिल्में बनाए, यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान हफ्तों महीने देश विदेश में साथ थे और फिर ये एक आदत बन गई कि हम हर वक्त एक साथ रहते थे। घर में तनाव स्पानिंगन था और कहा कि फैसला जो वो अब लेंगे इससे माँ बाप खुश नहीं होंगे। फिर एक दिन हेमा ने धर्म जी को फ़ोन किया और कहा कि मुझसे अभी शादी कर लो। ये लफ्ज सुनने के लिए धर्म जी बेताब था। आखिरकार दोनों ने फैसला किया शादी करने को, पर अफवाहें थे कि दोनों ने शादी करने के लिए पहले इस्लाम मजहब को कबूल किया था। लेकिन धर्म जी और हेमा ने हमेशा इस इल्ज़ाम को इनकार किया और कहा कि पार्लियामेंट की मेंबर्स की हैसियत से ये दोनों के खिलाफ एक सियासी चाल थी। इन दोनों की शादी अयंगर तौर तरीके से हुई थी। धर्म जी की तरफ से सिर्फ उनके वालिद था। शादी के मौके पर धर्म ने एक वेश्ती साउथ इंडियन रिवायती लिबास पहना हुआ था। पंडित प्रधान ने कहा कि तकरीब औकफेर अयंगर रिवायत के मुताबिक की गई थी और कहा पंडित प्रधान ने कि शादी का दिन त्वे मै नेहन तख्तख में था। ये शादी इंतहाई निजी यानी प्रिफे मामला थी और ये शादी हेमा के भाई के घर में हुई थी। हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती ने उनकी शादी में मौजूद नहीं थी। माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे। कहा गया कि धर्म पहले ही अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर से शादी कर चुकी थी और उसे कानूनी तौर पर तलाक नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने हेमा जी के शादी को ऑफिशियल बनाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। हेमा की माँ से जब जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि क्यों वो शादी में शिरकत नहीं की, तो उसने कहा कि ये शादी तामील की रीत और रिवाज की मुताबिक नहीं हुई थी और वो चाहती थी कि हेमा जितेंद्र से शादी करे। कहानी दिलचस्प है, पहले एक गीत सुनवाते हैं।

फिल्म रजिया सुल्तान में से ये नगमा पेश था। इस फिल्म में अहम किरदार में थे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। इस नगमा से पहले आपने सुना कि शूना लिस्टन जब हेमा की माँ से सवाल किए कि आप इस शादी के खिलाफ क्यों थी, तो माँ जया चक्रवर्ती ने कहा, कई वजह थी, धर्म जी शादीशुदा था, चार बच्चों का बाप और मेरी उम्र का था। मैगजीन वाले ने लिखे कि शादी के दिन धर्मेंद्र

अपनी बीवी हेमा को दो हीरे की अंगूठी दिया था और उसके वालिद अपने नई नवेली बहू को एक साड़ी दी थी। हेमा ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने बहुत पहले ही उसे जहनी तौर पर दिल और दिमाग से अपना जीवन साथी बना लिया था और ये रीत और रस्में सेरेमोनी सिर्फ हमारे परिवारों को खुशी करने के लिए थी। यहाँ तक कि धर्म मुझे एक अयंगर मंगलसूत्र भी दिया था। कुछ सालों बाद हेमा जी अपने बेटियों ऐशा और अहाना के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कभी किसी दूसरे खानदान से मुकाबला नहीं करती थी और कहा हेमा ने मैंने मोहब्बत की है, बदले में उनसे कुछ मांगा नहीं। धर्म अभी भी अपने पहली बीवी प्रकाश और बच्चों का ख्याल रखता है और वो हमेशा अपनी बेटियों ऐशा अहाना और मेरे लिए मौजूद रहते हैं। बच्चे जब अपने वालदैन के बारे में हकीकत जाना तो उन्हें एतराज़ नहीं हुआ। ऐशा दियोल अपनी किताब में लिखा कि अगर मेरी माँ ने एक अयंगर से शादी की होती तो आज वो सिर्फ एक घरेलू बीवी होती। हेमा ने कहा कि घर के कुछ कायदे कानून था, ऐशा और अहाना दोनों को शलवार कमीज पहननी थी और जीन्स पहनने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी, शॉर्ट्स या तंग लिबास भी मना था। धर्म जी कुछ बातों के बारे में संजीदा सीरियस था। वो एक क्लासिक पंजाबी बाप था लेकिन आज़ाद ख्याल हेमा की बदौलत धर्म जी खुद बदलने लगा। उसने मेरी किसी क्लासिकल डांस में शिरकत नहीं थी। एक बार मेरे डांस देखने के बाद धर्म जी मुझसे कहा, आप बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं, जैसे आपका ताल्लुक मुझसे नहीं है। अब मैं तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस मंच पर कभी भी नहीं देखेंगे। और कहा धर्म ने, बच्चों को डांस मत सिखाना। पर हेमा की जिद थी, वो अपनी बेटियों को क्लासिकल डांस सिखाई। लेकिन उन्हें देखने के बाद धर्म ने अपना इरादा बदल लिया। हेमा ने कहा कि ये उसका कसूर नहीं था कि उसने ऐसी सोच ऐसे ख्याल रखा था। फिर धर्म ने अपने बेटियों ऐशा और अहाना से कहा, मम्मी की जैसे करो डांस। डांस तो ठीक है पर फिल्मों की तरफ एक्ट्रेस बनने का ख्याल इसके बारे में सोचना ना कभी, इसके इजाज़त नहीं मिलेंगे। आगे क्या होता है, धर्मेंद्र अपने बेटियों को एक्ट्रेस बनने की इजाज़त देंगे या नहीं, अगले प्रोग्राम में बयां करेंगे। अब इस जुगल गीत के साथ इस हिस्से का प्रोग्राम फिल्मी दुनिया यहीं पर रोक देती हूँ।

फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान शख्स धर्मेंद्र साहब के बारे में बयां किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं ये ड्यूएट।

सदाबहार दो गाना पेश था मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ों में। मोहब्बत भरे अंदाज में लुत्फ उठाइए इस नगमा से।

नादिर कपूर की शहद भरी आवाज में पेश था ये नगमा। लोगों ने मुझे बताया कि वक्त बदल जाता है और वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाता है। ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी साथ रहेगा, इसीलिए अकेले चलना सीख लो। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं।

कहानी किस्मत की दिल छू लेने वाली नगमा पेश था मुकेश की दर्द भरी आवाज़ में। अब आइए सुने अगला गीत।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तेरे बिन, कभी बात करने की हसरत और कभी देखने की तमन्ना, तुम बिन मन की बात अधूरी, दिन है अधूरे, रात अधूरी।

फिल्म मृत्यु दंत का नगमा पेश था महान शायर जावेद अख्तर का कलाम था मौसिकी आनंद मिलेन की। आवाजें थी कुमार सानू और साधना सरगम की। समय तो धीरे धीरे चल मिलकर सुनाएंगे आशा भोसले और किशोर कुमार।

समय तो धीरे धीरे चल, अमर गीत आपने अभी सुना। संगीत से सवारे थे राहुल देव बर्मन और गीत रचना राज कवि तुलसी का। कौन कहता है कि मोहब्बत आंखों में होती है, दिल तो वो भी ले जाते हैं, दिल तो वो भी ले जाते हैं जो नजरें झुका कर चलते हैं।

शोखिया नजर में है शहराना अंदाज में पेश था ये नगमा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी और आनंद बख्शी का कलाम था। अकेले जीने की आदत तो पहले से थी लेकिन न जाने क्यों आजकल तन्हाई महसूस हो रही है।

राहुल देव बर्मन का सजाया संगीत में पेश था ये नगमा, बोल था आनंद बख्शी का। मैं जिस दिन देख लूं तुमको, मुझे महसूस होता है कि ये दुनिया कितना खूबसूरत है। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते।

फिल्म आशिक में से ये गीत पेश था। संगीतकार शंकर जयकिशन संगीत से सवारे थे और शायर शैलेंद्र का गीत रचना था। रोमानी अंदाज में आइए सुने लता मंगेशकर से ये खूबसूरत नगमा।

चंद प्यार मेरा खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा महान शायर राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्ज और संगीत से सवारे थे से रामचंद्र। इसी रुमानी अंदाज में अगला नगमा पेश है आशा भोसले की आवाज़ में।

फिल्म उमंग का नगमा आपने अभी आशा भोसले से सुना। गीतकार अनजान का तर्ज, संगीत देने वाले थे शंकर जयकिशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सुनने वाले ये प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। अब आइए सुने तलत महमूद से ये नगमा।

वहां नगमा पेश था तलत महमूद की आवाज में। अब आइए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहिब से ये दो गाना।

फिल्म पारस मनी से ये दो गाना लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कलाम था असद भोपाली का, संगीत देने वाले थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब आइए सुने मुकेश से अगला गीत।

और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। नमस्कार। खादिमा थी निशा।

0: live vanuit de hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

उजाला सोना चिरैया चिरैया म्यूजिक का सिलसिला जारी है, गाने अच्छे से अच्छे गाने आप उजाला रेडियो पर सुन रहे हैं। अब आप सुनिए उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया रेडियो, मैं हूं लॉयड महावीर अनहेल खुदमीदा हलमाओ उजाला रेडियो के जरिए यहीं से हम लाने वाले हैं थोड़ी देर में आप लोग के फरमाइश। आज है जबकि मंगलवार 9 तारीख जून vandaag dinsdag 9 juni को आज है दिन के रहने वाले अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराख के 20वीं विवाह की जयंती। फन हार्टे गेफेलिसिटेड अमृत एंड माधवी, आप दोनों की 20वीं विवाह की जयंती जो कि आज है। सोमदिन आप दोनों के लिए फरमाइश उजाला रेडियो के जरिए भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है।

था तो ये जाना सनम उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए ब्रिंक न्यू आप लोग की फरमाइश उजाला रेडियो पर देन हाँ के रहने वाले अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराह के आज 20वीं विवाह की जयंती है। उजाला रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप दोनों को ये विवाह की 20वीं जयंती को हम हार्दिक से बधाइयां देते हैं। उजाला रेडियो के फुल टीम की तरफ से 20वीं विवाह की जयंती बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराह के आज 20वीं विवाह की जयंती है और इस खुशी के मौके पर पतिदेव अमृत मोहन अपनी प्यारी प्यारी धर्मपत्नी माधवी मोहन पराह के लिए एन नामस माधवी मोहन पराह प्यारा प्यारा पतिदेव हैंडसम सा अमृत के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ पेश करें।

आज है मंगलवार 9 तारीख जून और भी दिनहाख के रहने वाले हैं अमरीत मोहन एंड माधवी मोहन पराख के 20वीं विवाह की जयंती है और इस खुशी के मौके पर एक दूसरे के लिए दिलोजान से प्यार मोहब्बत के साथ ये नहमको फरमाइश के प्रोग्राम में अमरीत मोहन एंड माधवी मोहन पराख के 20वीं विवाह की जयंती आज है संदाख खतराउत और इस खुशी के मौके पर लड़कन अभय और आयुष मोहन प्यारा प्यारा पापा अमृत के लिए एंड मामा माधवी मोहन पराख के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें

देन हाग के रहने वाले अमरीत मोहन एंड माधवी मोहन पराग की आज 20वीं विवाह की जयंती है। खुशी के मौके पर लड़कन अभय एंड आयुष मोहन लिव लिव पापा एंड लिव लिव मामा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के। अमरीत मोहन एंड माधवी मोहन पराग के 20वीं विवाह की जयंती आज है। खुशी के मौके पर पतिदेव अमरीत मोहन अपनी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल धर्मपत्नी माधवी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिलो जान के साथ अर्ज करें।

देन हाग के रहने वाले अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराह के 20वीं विवाह की जयंती है। 20 jaar getrouwd और इस खुशी के मौके पर खुश होकर नामस अमृत मोहन प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल ब्यूटी क्वीन माधवी के लिए बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाश के ब्यूटी क्वीन माधवी मोहन पराह के लिए। अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराह की आज 20वीं विवाह की जयंती है। खुशी के मौके पर मामा जिंती झिंकुराय प्यारा प्यारा दामाद अमृत मोहन के लिए और प्यारी प्यारी लाडली बेटी माधवी मोहन पराह के लिए बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश करें।

डनहाग के रहने वाला अमरीत मोहन एंड माधवी मोहन पराग के 20वीं विवाह के जयंती आज है। इस खुशी के मौके पर लिवी लिवी मामा प्यारी प्यारी सास जिंती झिंकुराय प्यारा प्यारा दामाद अमरीत मोहन के लिए एंड प्यारी प्यारी बेटी माधवी मोहन पराग के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ धमाको फरमाइश के बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ। अमरीत मोहन एंड माधवी मोहन पराग के 20वीं विवाह की जयंती आज है। इस खुशी के मौके पर नाम लीव पत्नी माधवी मोहन पराग प्यारा प्यारा पति अमरीत मोहन के लिए हैंडसम सा अमृत के लिए पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिलो जान के साथ पेश करें।

मैं माधवी मोहन पराह के आज 20वीं विवाह की जयंती है, खुशी के मौके पर नाम उस लिव माधवी मोहन पराह। प्यारा प्यारा लिव लिव मन अमृत मोहन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ दिलो जान के साथ अर्ज के अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराह के 20वीं विवाह की जयंती आज है, खुशी के मौके पर नाम से अमृत मोहन फॉर लिव लिव ब्यूटी क्वीन माधवी के लिए एंड नाम से माधवी फॉर लिव लिव मन हैंडसम्स अप प्यारा पतिदेव अमृत के लिए एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ पेश करें।

अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराह के 20वीं विवाह के जयंती आज है। खुशी के मौके पर एक दूसरे के लिए दिलोजान से प्यार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश किए। यू आर उजाला रेडियो, ये है और उजाला रेडियो के जरिए फरमाइशें जारी किया जा रहे हैं। अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराह के 20वीं विवाह की जयंती आज है। इस खुशी के मौके पर इस बार लड़कन अभय एंड आयुष मोहन प्यार प्यारा लिफ लिफ पापा एंड लिफ लिफ मामा के लिए, पापा अमृत एंड मामा माधवी के लिए प्यार मोहब्बत के साथ बधाई के साथ पेश करें।

Den Haag के रहने वाले अमृत मोहन एंड माधवी मोहन बराह के 20वीं विवाह के जयंती आज है और इस खुशी के मौके पर नाम से किंद्रन अभय और आयुष की तरफ से लीव पापा अमृत एंड लीव मामा माधवी के लिए बधाई शुभकामना प्यार दुलार के साथ फरमाइश के। अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराह की आज 20वीं विवाह की जयंती है। खुशी के मौके पर पत्नी माधवी मोहन पराह प्यारा प्यारा पति लिफ मन हैंडसम समान अमृत मोहन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ दिल और जान के साथ पेश करें।

डन हाग के रहने वाला अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराग की 20वीं जयंती आज विवाह की जयंती हाँ 20वीं विवाह की जयंती आज है और इस खुशी के मौके पर नामस लीव लीव धर्म पत्नी माधवी मोहन पराग की तरफ से प्यारा प्यारा पति देव लीव मान अमृत मोहन के लिए प्यार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश की है।

अमरीन मोहन एंड माधवी मोहन पराख, आप दोनों की आज 20वीं विवाह की जयंती है। हार्दिक से बधाई और शुभकामना पेश है। नाम उस उजाला रेडियो समस्त परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां शुभकामना पेश कर रहे हैं। ना दे रिक्लाम, कमर्शियल ब्रेक के बाद जरूर फरमाइश सुन लेना। उजाला रेडियो आपको बधाइयां दे रहे हैं। वै फेल इसी तेरी यूरी फन हार्ट में चुली 20 यार हुलक्स यूबिलेम।

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg op dit moment. Twee bijzonderheden. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide een auto in brand gevlogen. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Zevenbergsehoek staat een auto met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en dat kost je bijna een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Udjala Radio je he. Udjala Radio ki full team ki taraf se. Aap sabhi ko ek shubh sham. Main hoon Lloyd Mahavir. Aap program mein farmaishe jari hai. Din aakh ke rehne wale Amrit Mohan and Madhvi Mohan parakh ke liye. 20वीं विवाह की जयंती आज मंगलवार और भी 9 तारीख जून को है। आप दोनों को विवाह की 20वीं जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश हैं। भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान आपके जीवन में सदा प्रेम सुख बनाए रखे। Van harte gefeliciteerd met jullie 20-jarig huwelijksjubileum. Mogen God jullie leven blijven vullen met liefde, geluk en voorspoed. Den Haag के रहने वाले अमरीत मोहन एंड माधवी मोहन पराग के 20वीं विवाह के जयंती आज है और इस खुशी के मौके पर मामा लीफा सास जिंती झिंकुराय प्यारा प्यारा दामाद अमरीत मोहन एंड प्यारी प्यारी बेटी माधवी के लिए बधाई शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ पेश करें।

Den Haag के रहने वाले अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराग के बीसवीं विवाह के जयंती आज है। खुशी के मौके पर नाम्स लीव मामा एंड लीव सास जिंती झिंकुराई प्यारा प्यारा दामाद एंड प्यारी प्यारी बेटी के वास्ते बधाइयां शुभकामना के साथ पेश के। अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराग के बीसवीं विवाह की जयंती आज है। इस खुशी के मौके पर लीव मन अमृत मोहन अपनी प्यारी प्यारी लीव लीव फ्राउ धर्मपत्नी माधवी मोहन पराग के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत दिलो जान के साथ अर्ज करें।

Den Haag के रहने वाले अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराख के 20वीं विवाह की जयंती आज है और इस विवाह के खुशी के मौके पर बहन गायत्री की तरफ से बहन माधवी के लिए एंड छोटकू अमृत के लिए अमन लल को प्यारी प्यारी साली एंड सारू भाई के लिए बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के फिर एक बार अमृत मोहन एंड माधवी मोहन के 20-यारख ह्यूलक्स यूब्लेम के उपलक्ष्य पर 20वीं विवाह के जयंती के उपलक्ष्य पर नाम्स लीव अमंग अमृत मोहन फॉर लीव लीव फ्राउ ब्यूटी क्वीन माधवी मोहन पराख के लिए प्यार मोहब्बत के साथ पेश करें

आज 9 तारीख जून और दनहा के रहने वाले अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराह की 20वीं विवाह की जयंती है। खुशी के मौके पर नाम से अमृत मोहन फॉर लीफ पत्नी माधवी मोहन पराह के लिए प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश के। अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराह की 20वीं विवाह की जयंती आज है और इस खुशी के मौके पर जयंती गायत्री अमर हिल्डा अभय एंड आयुष की तरफ से फॉर अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराह के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ पेश करें।

0: आज है मंगलवार, मंगलवार 9 तारीख जून। दिन के रहने वाले अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराग के 20वीं विवाह की जयंती है। 20 यार ह्यूलक्स यूबिलियम और इस खुशी के मौके पर जयंती गायत्री अमर हिल्डा अभय एंड आयुष की तरफ से अमृत एंड माधवी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश के। अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराग के 20वीं विवाह की जयंती आज है, खुशी के मौके पर। नाम उस माधवी मोहन पराग लीफ पति लीफ मान अमृत मोहन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश करें।
1: सुना है प्यार धड़कनों से बना होता है, उसकी हर आहट में चाहत का नशा होता है। वो लम्हा बना दो मुझे जो गुजर कर भी तुम्हारा रहे, उतर जाओ मेरे दिल में इस कदर कि धड़कनों का एहसास रहे। हैप्पी एनिवर्सरी।

5 9 तारीख जून को अमृत मोहन एंड माधवी मोहन परार अपनी 20वीं विवाह के जयंती 20-jarig huwelijksjubileum मना रहे हैं परिवार के साथ खुशी के मौके पर नाम से माधवी मोहन परार फॉर लीव मान अमृत के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश के प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराग के 20वीं विवाह के जयंती आज है इस खुशी के मौके पर मामा हिल्डा मंसराम प्यारा प्यारा बेटा अमृत मोहन के लिए एंड पतो माधवी मोहन पराग के लिए छोटा भाई सुदेश मोहन एंड छोटी बहन विश्मा पराग भाई अमृत मोहन एंड भाऊजी माधवी मोहन पराग के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें

उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम आपने जो इस पर जो आपने सुनी इस पर फरमाइश थे सुनने वालों दनाह के रहने वाले अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराख के 20वीं विवाह की जयंती आज मंगलवार 9 तारीख जून को है और इस खुशी के मौके पर नाम से मामा हिल्दा मंसराम प्यार प्यारा बेटा अमृत मोहन के लिए एंड पोतो माधवी मोहन पराख के लिए छोटा भाई सुदेश मोहन एंड छोटी बहन विषमा पराख भाई अमृत मोहन एंड भाऊजी माधवी मोहन पराख के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश के अमृत मोहन एंड माधवी मोहन पराख जितने से फरमाइश था स्मार्टफोन पर आए हैं डन फॉर फंडा आप दोनों को ये 20वीं विवाह के जयंती बहुत बहुत बधाइयां हार्दिक से बधाई हो शुभकामना पेश कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना है कि आप दोनों को सदा खुश रखे आप सुखी से रहे सदा से रहे प्रेम से रहे प्रेम सुख बनाए रखें आप दोनों नॉर्मल्स फन हार्ट गेफेलिसिटेट नाम से थे टीम फन उजाला रेडियो उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश से सुनने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक वेंश जुली अलबाई एन हेले फाइने दाग फाइने आवंद उजाला रेडियो की तरफ से आप दोनों को विवाह के 20वीं जयंती के ढेर सारे शुभकामनाएं उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है स्टूडियो मेल info@ujala.nl vijftien aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Je had ik hem in het programma kopies gegeven. Ik wens jullie allemaal een hele fijne middag, fijne avond, millingen op zekel.

The rocking and most sensational leader in broadcasting, you are Ujala Radio का पैगाम आपकी खिदमत में ब्रॉडकास्ट है। स्टूडियो एमस्टरडम से आपका खादिम शहीद गुलजार की तरफ से खैर मकदम के साथ नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। इस एक घंटे का पैगाम में सबसे पहला सिलेक्शन लीजिए अर्ज है अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज़ में।

हम तो बोल देला, हम ना छुपाएला। हर किसी के दिल में, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल, हमारे दिल में एक ख्याल ना, चार पांच लड़की के ख्याल। सिलेक्शन प्रोग्राम में पेश की गई है अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में। फिल्म का नाम हाँ मैंने भी प्यार किया है। द रॉकिंग एंड मोस्ट सेंसेशनल लीडर इन ब्रॉडकास्टिंग यू आर का पैगाम आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। फोन का नंबर है आत्मनिश राशि पर आज नहीं तो कल के वास्ते आप फोन का नंबर लिख लेना 02-409-08-07 पर आप डाल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम और काज के वास्ते। मिले जुले संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में द बॉम्बे फाइकिंग्स।

मेरे दिल ने, ए भैया ए भाभी जी, मेरे दिल ने तड़प किए जब नाम तेरा पुकारा। बॉम्बे फाइकिंग से आप सिलेक्शन सुने हैं मिक्स मार्क सॉन्ग्स में, मिले जुले संगीत में जो उजाला रेडियो के जरिए नशर किए जा रहे आप सभी श्रोताओं की खिदमत में।

Non-stop, यानी कि लगातार मिले जुले संगीत। और ऐसे में हो जाए द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू जी की आवाज में एक शरारत होने को है। हर एक सुनने वालों को एक बहुत ही शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे हैं स्टूडियो से। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं आप सभी खुश रहे और सलामत रहे और एक शरारत होने दो ना।

बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन आपकी खिदमत में अभी पेश की गई है। ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। लीजिए अर्ज है मिले जुले संगीत में ब्लैक मेल नामक फिल्म से, द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर दा की आवाज, पल पल दिल के पास, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। सभी लॉफर्स के वास्ते, सभी प्यार करने वालों के वास्ते ये सिलेक्शन उजाला रेडियो के पूरी टीम की ओर से अर्ज है, पल पल दिल

The Nightingale of India, लता मंगेशकर की आवाज में उजाला रेडियो के जरिए आपने भी सुने हैं और मिले जुले संगीत में इस बार हम आपको सुनाने वाले हैं सुरों का बादशाह, संगीत का फरिश्ता पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज़।

अजब दास्ता तेरी है ऐ जिंदगी, कभी रुला दिया कभी हंसा दिया। सुरो कबाचा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, फिल्म का नाम शरारत। जब सर चकराए या दिल डूबा जाए, तू काहे घबराए, आजा प्यारे पास हमारे, तू काहे घबराए। वंस अगेन प्रोग्राम में बॉम्बे फाइकिंग्स स्टेशन, तू जाने है तो यू आर

आजा प्यारे, आजा प्यारे, पास हमारे। सर जब चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे, पास हमारे, तू कहाँ है घबराए। द बॉम्बे वाइकिंग्स को आप सुने हैं आज इस पैगाम में उजाला रेडियो के जरिए। मैं हूँ आपका खादिम शहीद गुलजार। आपको इस एक घंटे का पैगाम में कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मार्क्स सॉन्ग सुना रहा हूँ।

और राधा क्या बात है। सलेक्शन आपकी खिदमत में पेश की गई है श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर की आवाज में। फोन का नंबर आप नोट कर लेना 020 Amsterdam 020 409 0807। इसी नंबर पर आप डाल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक।

तू कहीं आस पास है दोस्त, शुरू का बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक छोटा सा गीत आपने भी सुने हैं। ये रफ़ी साहब का आखिरी रिकॉर्डिंग था, शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन ये फिल्म आसपास का आखिरी रिकॉर्डिंग मोहम्मद रफ़ी साहब का था।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

संगीत के रंग उजाला रेडियो पर। उजाला रेडियो के साथ यह खूबसूरत संगीत यात्रा यहीं पूरी होती है। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

निकाला हुआ। और सुनने वालों, उजाला रेडियो, आपको मालूम है ना कि खुशी हो या गम, उजाला रेडियो है आपका साथ हरदम।

एक तेरा साथ और हमको दो जहां से प्यारा है, लता जी एंड मोहम्मद रफी साहब से गीत आप सुने फिल्म वापस से।

तेरा बन जाऊंगा एंड मोई नंबर आइट कबीर सिंह एंड अब हिस्सा लेंगे प्रोग्राम में मोहम्मद रफी साहब।

जिस्म दो है और एक जान, मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने, उजाला रेडियो है ये। De leukste, ja toch, en de gezelligste.

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम दर्दे दिल। प्रोग्राम दर्दे दिल दर्द भरी गीतों के साथ बनाया जा रहा है आप ही के लिए, उन गीतों के साथ जिन गीतों को सुन करके कभी तो दिल को सुकून मिलता है और कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कैसा भी हो प्रोग्राम आप ही के लिए हम बना रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सुनेंगे और भी पसंद करेंगे। तो चलिए आज का प्रोग्राम में पहला गीत आप सुनेंगे लता जी की आवाज में होंगे।

दिल तो है दिल और दिल का एतबार क्या कीजिए। लता जी की आवाज में गीत को आप सुने। फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर 1978 निखंती नख्तन जीफन तख में बनाई गई और कल्याण जी आनंद जी संगीत से सजाए और इस फिल्म में काम किए उन दिनों अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा और राखी के साथ भी अमजद खान।

बहलाता नहीं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत को आप सुने, फिल्म का नाम दिल दिया दर्द लिया। 1966 की फिल्म, नीखंतिन जसन सस्तख की फिल्म, संगीतकार यानी कि संगीत से सजाइए इस गीत को नौशाद साहब। और इस फिल्म में काम किए उन दिनों दिलीप कुमार, वाहिदा रहमान और प्राण जी। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम, दर्द दिल आपके लिए दर्द भरी गीतों के साथ बनाया जा रहा है।

को इस रात की तन्हाई में आवाज न दो। मुकेश जी की आवाज। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1960 निखंतिन जस्तक की फिल्म और संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी। और इस फिल्म में काम किए उन दिनों धर्मेंद्रा के साथ बलराज सानी, उषा किरण और कुमकुम।

तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाइए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज 1963 निखंतिन द्रियन सस्तक की फिल्म सहरा से निकाला हुआ गीत रामलाल संगीत से सजाइए। और इस फिल्म में उन दिनों काम किए संध्या के साथ प्रशांत, मनमोहन कृष्ण मुमताज और प्रशांत के साथ ललिता पावड़ भी इस फिल्म में उन दिनों काम की है।

तेरी याद में सारी दुनिया भुला दी, बस अब तेरी हाँ हाँ आई आई, बस तेरी याद आई। लता जी के साथ अमित कुमार से गीत को आप सुने, फिल्म रोमांस का गीत, फिल्म रोमांस जो 1983 में नई खंतीन द्रियन तख्तक में बनाई गई, राहुल देव बर्मन म्यूजिक कंपोजर, और इस फिल्म में काम किए कुमार गौरव, शमी कपूर एंड पूनम ढेलोन। ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और प्रोग्राम दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ बनाया जा रहा है आप ही के लिए।

अकेले है चले आवो जहां हो। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत को आप सुने। पुरानी फिल्म राज से निकाला हुआ 1967 में बनाई गई नीखंतिन ज़ीफ़नन ज़स्तख की फिल्म, जिसमें संगीत से गीत को सजाइए कल्याण जी और आनंद जी, और इस फिल्म में काम किए राजेश खन्ना के साथ बबीता जी।

दिल होम होम करे और घबराइए, लता जी की आवाज में इस सुंदर गीत को आप सुने। फिल्म रुदाली से निकाला हुआ गीत और संगीतकार भूपेन हजारिका। इस फिल्म में काम किए राखी के साथ राज बब्बर और डिंपल कापाड़िया।

तेरे बंदा सामने तेरे तेरा बंदा, हाँ सामने तेरे तेरा बंदा, और ये बहुत ही मजबूर है। गीत आप सुने किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म अब्दुल्ला से निकाला हुआ 1980 निखंतिन तख्तख की फिल्म, और संगीत से सजाइए राहुल देव बर्मन। इस फिल्म में काम किए राज कपूर के साथ संजय खान और जीनत अमन।

और जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए। मुकेश जी की आवाज 1971-71 की फिल्म आनंद में गीत पेश आई है और सलील चौधरी, हाँ म्यूजिक से सजाए, संगीत से सजाए सलील चौधरी, और इस फिल्म में काम किए हैं अमिताभ बच्चन के साथ राजेश खन्ना और सुमिता सन्याल और दुर्गा खोटे। ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और प्रोग्राम दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ बनाया जा रहा है। आप जिस सुन रहे हैं ये हमारी खुशनसीबी है।

तुझे सांजोड़ सवेरे, फिर भी तेरे नाम को आवाज मैं ना दूंगा। मोहम्मद रफी साहब की आवाज। 1964 नई खुंतिन फिरन जस्तख की फिल्म दोस्ती से निकाला हुआ गीत हम आपको सुनाइए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत से सजाइए और फिल्म में काम किए संजय खान के साथ सुधीर कुमार, नाना पलसिकर और अभी भट्टाचार्य जी। अब आज का इस प्रोग्राम दर्द दिल में एक आखिरी गीत आप सुनेंगे फिल्म मिली से किशोर कुमार की आवाज में होंगे।

सुनी है ये जिंदगी, किशोर कुमार की आवाज में गीत आप सुने। फिल्म मिली से निकाला हुआ 1975 के फिल्म और संगीत से सजाए सचिन देव बर्मन के साथ भी राहुल देव बर्मन फिल्म में काम किए, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अशोक कुमार एंड उषा किरण। सुनने वालों, इसी के साथ समाप्त किया जा रहा है आज का प्रोग्राम दर्दे दिल। उम्मीद है, आशा है कि आपको पसंद आए हुए होंगे। आप जो सुने, बहुत बहुत शुक्रिया।

पहले तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

उजा रेडियो देश भर में सुनाई देता है DAB+ तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो।